Assalamu alaikum, Nazman bhai. I am Shahid from Chandpur. Very nice and no tension. Beauty cream, zindabad. And walaikum salam, walaikum salam. Salim Gadhel se bade manana khushal se. Meri taraf se Rimla baji ko salam, walaikum salam. Acha hai bhai, kaise ho? ठीक हो ना सी इसे मैं मन हैमान की फ्रेंड माहिन हूँ आप मुझे जानते हो क्योंकि जब आप पहले आए थे चाक में हमने आपको बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत दिया था से और मैं माहिन तीन चार साल से हूँ अब मैं अपना नेम कैसे चेंज करूँ ये तो मेरे साथ भी बेइंसाफी हुई तो मैं माहिन हूँ इंशाल्लाह माहिन रहूंगे देर से देने लवासी बल महीन हूँ लाला जी अस्सलाम वालेकुम लाला जाना कैसे हो लाला जाना एक बार फिर हमारे मरवत जुबान में बातें करो प्लीज लाला जाना महीन फ्रॉम टॉम ओके सर छुपाया मेरा नाम लेते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है रोनिश तनखा ओके खुरे खुशहाल है अरे खुशहाल

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and very warm welcome to all the sweet listeners of Global FM 91 and Radio Aman 88.4. जनाब, हमेशा हमारे साथ तीन स्टेशन होते हैं, लेकिन आज हमारे साथ हैं दो रेडियो स्टेशन, यानी के डेरा इस्माइल खान और टांग के एक साथ. ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम जनाब, पहाड़पुर एफएम के ऊपर हमारी ट्रांसमिशन आज नहीं है. तो जनाब सुपैर की चार बजती है आपको अपने शहर के एफएम. जी जनाब, आपके अपने शहर के ऊपर एक आवाज सुनाई देती है जनाब, जो की आवाज है केसन नेचुरल पाकिस्तान की आवाज, वो कंपनी जो आप लोगों के लिए ढेर सारे प्रोडक्ट तैयार कर रही है. तो जनाब आज दिन है 8 सितंबर है जनाब 2026, मंगल का दिन है और बदरू की आज 24 तारीख है. जी जनाब, गर्मी को बस बाय बाय कहने का वक्त हुआ चाहता है, क्योंकि एग्जैक्ट एक हफ्ते बाद, यानी कि फिर से जब हम आपके पास आएंगे अगले हफ्ते को, तो क्या होगा कि जनाब अस्सू का महीना जो है, कहते हैं कि लग चुका होगा. और अस्सू का जो महीना होता है उसके अंदर सुबह सुबह जो है वो ठंडी ठंडी हवाएं चलना शुरू होती हैं, और वही बेसिकली जो है वो सर्दी की दावत होती हैं. और अब मौसम जो है वो बतदरीज बढ़ता हुआ जनाब हमें सर्दियों की तरफ लेके जाएगा. तो जनाब गर्मी हो या सर्दी हो, केसन नेचुरल पाकिस्तान आपके साथ है, क्योंकि जनाब आपकी गर्मी के मसाइल, गर्मी में आपकी स्किन को पैदा होने वाले मसाइल, या सर्दी की वजह से आपकी स्किन के पैदा होने वाले मसाइल का हल जो है वो केसन के पास है, क्योंकि जनाब केसन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है. जी जनाब, ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप लोगों के लिए लेके आते हैं हम, और ऐसे वैसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी लेके नहीं आते हैं, वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो आपकी स्किन के अंदर जान डालते हैं, जो आपकी जरूरत है, और मुजर केमिकल से फ्री जनाब हम आप लोगों को प्रोडक्ट पेश करते हैं. कल में शॉप पर मौजूद था तो कोई और नहीं था, एक फीमेल आई जनाब, यानी कि कोई वर्कर वगैरह, लड़के वगैरह स्टाफ में कोई नहीं था, तो एक फीमेल आई जनाब और कह रही थी कि उस दिन मैं यहाँ से गुजर रही थी, तो मैंने देखा कि ये लशपश सी दुकान है, तो मैंने कहा इनसे पता करते हैं कौन से प्रोडक्ट है. तो भाई यहाँ पर एक लड़का ठहरा हुआ था, मैंने उसको बताया कि मेरी स्किन का मसला है तो मुझे कोई क्रीम दें. तो भाई उन्होंने मुझे ना ये ब्लैक डब्बी वाली केसन नाइट क्रीम के मैं बात कर रहा हूँ, जाफरानी क्रीम की, जो हमारी जाफरानी फॉर्मूला है उसकी मैं बात कर रहा हूँ. तो कह रहे थे कि भाई बहुत ही जबरदस्त है, मैंने 10-12 दिन लगाई है और इतनी जबरदस्त, मैंने आज तक किसी क्रीम से ना ऐसी स्किन के ऊपर खूबसूरती नहीं पाई है जो मुझे इस क्रीम ने दी है. मुझे ये भी दे दे और मुझे बताए और आपकी कंपनी का क्या है. ठीक है, वो सिर्फ वहां से गुजर रही थी और सेटअप हमारा देखा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सेटअप बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट तरीके से बना हुआ है. डेरा में आपको ऐसी दुकानें देखने को नहीं मिलती हैं जैसा कि हमारा सेटअप है. ठीक है जनाब, एक ब्रांड की प्रेजेंटेशन आपको मिलती है, एक लुक मिलती है. एक दफा एक टीम आई हुई थी लाहौर से किसी ब्यूटी क्रीम, उनके 5-6 प्रोडक्ट थे, तो रुके हैं यहाँ पर. तो रुकने के बाद जनाब उन्होंने कहा भाई हम कुछ तस्वीरें ले लें, आप अल्लाह को जान दें, यानी ये उसके मैनेजमेंट का बंदा था, उसने कहा सर हम कुछ तस्वीरें ले लें आपकी सेटअप की. पूरे डेरे में हमें पूरे बाजार की दुकानें घूम कर आए, हमें आप जैसा सेटअप नजर नहीं आया कि कितना आपने खूबसूरत तरीके से अपना सेटअप बनाया हुआ है. एक कलर स्कीम है हमारी गोल्डन और ब्लैक. तो जब हम अपना सेटअप बना रहे थे ना, तो सारा सामान जो है वो ब्लैक आ रहा था, और दुकानदार ना हैरान होते थे यार ये किस तरह की दुकान है जिसके अंदर सारी चीजें ब्लैक आ रही है. ब्लैक एंड गोल्डन कंट्रास्ट होता है हमारे प्रोडक्ट्स का, आप हमारे प्रोडक्ट्स देखते होंगे हर प्रोडक्ट के ऊपर ब्लैक और कलर है, तो हर चीज पंखा तक हमारा जो है ना वो भी गोल्डन एंड ब्लैक है. ठीक है जी ना, तो हर चीज ब्लैक एंड गोल्डन है. तो वो भाई तस्वीरें लेके गए ना हमारी शॉप की, और मुझे कहा कि यार ये कितना प्यार, ये कहां से आपने जुमला बनाया है, प्यारा लगना तो सबका क्या, हमारा जो लोगो है ना केसन शॉप के ऊपर जो लगा हुआ है उसके नीचे लिखा हुआ है प्यारा लगना तो सबका हक है. तो वो जनाब क्या है कि यार ये किसने आपको सेटिंग करके दी है इतनी प्यारी ब्रांड. मैंने कहा केसन ब्रांड है सर, और इसकी हर एक चीज के पीछे पैसे लगे हुए हैं, लोगो के ऊपर भी पैसे लगे हुए हैं, इसकी जो हम बोलते हैं कि प्यारा लगना तो सबका हक है, तो इसको भी हमने बनाने के ऊपर पैसे दिए हैं, हर चीज के ऊपर पैसे लगते हैं और पैसा बोलता है. ठीक है जनाब, पैसा जहां पर भी लगाएंगे वो बोलेगा, पैसे की ये खूबसूरती है, आप जहां पर भी लगाएंगे ना पैसा बोलेगा कि मैं यहां पर लगा हुआ हूँ, ये शरीफ इंसान है पैसा जो बता देते. तो मैं बात कर रहा था उस बहन की,
तो कह रहे थे कि और कौन सी प्रोडक्ट है, आप हमें बताया ना जरा, ये डब्बियों में क्या पड़ा है, वेट कम पेट कम पड़ी थी और साथ में ताकत प्लस ना, तो मैंने उनको बताया। तो फिर चार प्रोडक्ट वो और लेके चली गई, फेस वॉश लेके चली गई, अर्जेंट फेशियल हमारा बहुत जबरदस्त है, मैंने कहा कि आप ये ले जाए, वो लेके चली गई, साथ में ग्लूटा। जब मैंने उनको बताया ना कि ग्लूटा की क्रीम कहती है, अच्छा आपकी ये जफरानी इतनी अच्छी है तो ग्लूटा भी अच्छी होगी, मुझे ये भी दे दें हम साथ में। कहने का मकसद ये है, कोई शो नहीं मारने, शो ऑफ नहीं कर रहा मैं आप लोगों के सामने, रियलिटी बता रहा हूँ, जो कस्टमर्स का फीडबैक है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जाफरानी क्रीम हमने आज से 3 साल पहले लॉन्च की है, यानी कि हम कितने इल्म वाले लोग हैं कि हमें 3 साल पहले पता था कि ये फार्मूला इतना इन होना है। आज हर कोई जाफरानी क्रीम ढूंढ रहा है, हर कोई जाफरानी। और मैं आपको बता दूं, मैं आपको क्लियर बता दूं, जाफरान इस वक्त 7.5 लाख का किलो है, जाफरान जो है ना 7.5 लाख का इस वक्त किलो है, समझ आ रही है। और इस वक्त जो आपको सोशल मीडिया के ऊपर नजर आ रहा है, आधे आधे किलो के जाफरानी क्रीमें और 400 रुपए रेट, 500 रुपए, कैसे पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है आधे किलो का डब्बा आपको इतना 400 रुपए में मिल जाए। भाई अगर आपने ओरिजिनल जाफरानी क्रीम, अगर आपका माइंड बन गया है ना जाफरानी क्रीम लगाने का, मैं आपको बता रहा हूं केसन की जाफरानी क्रीम खरीदें, केसन का जाफरानी सोप खरीदें। हम वो कंपनी है जो 3 साल पहले ये दोनों प्रोडक्ट बना के आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या निशानी है जाफरान की, ठीक है जनाब, खालिस जाफरान की क्या निशानी हो सकती है? तो भाई तू ही पर जाफरान जो होता है इसके बड़े फायदे हैं, ठीक है जनाब। ये अब आजकल केमिकल की दुनिया के अंदर लोगों ने अपने चेहरे इतने खराब कर लिए हैं, इतने खराब कर लिए हैं कि अब वो बेचारी औरतें अपने चेहरों को बचाने के तरीके ढूंढ रही हैं कि क्या कोई ऐसी नेचुरल चीज मिल जाए, कोई ऐसा मिल जाए कि मेरा चेहरा मजीद खराब होने से बच जाए। तो भाई जाफरान जो है ना बहुत ही जबरदस्त चीज है आपके चेहरे के ऊपर निखार लाने के लिए, आपके चेहरे के ऊपर आपकी रंगत को गोरा करने के लिए, आपके दाग धब्बों को खत्म करने के लिए और डलनेस को खत्म करने के लिए, यानी कि मुरझाया हुआ चेहरा जो है ना वो आपका खिल सकता है अगर आप जाफरान से बनी हुई चीजों को अपनी रूटीन का हिस्सा बना। ठीक है जनाब, तो हम पिछले 3 सालों से आप लोगों को जाफरानी फार्मूला पेश कर रहे हैं। अच्छा कुछ लोगों को अभी प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम ये हो रही है कि जनाब पहले हमारी 2 क्रीमें होती थी, एक सादा क्रीम होती थी, एक जाफरानी क्रीम होती थी। नाइट क्रीम की मैं बात कर रहा हूं, जो केसन की नाइट क्रीम है, पहले हमारी 2 क्रीमें होती थी। जब शुरू में हमने लॉन्च की थी तो जाफरानी क्रीम नहीं थी, सादा क्रीम थी। तो बीच में हमने 2-3 साल पहले हमने उसका एक और वेरिएंट बना दिया जाफरानी क्रीम का, तो हमने उसके अंदर जाफरान ऐड करके लोगों को दिया कि भाई वही पुराने वाली क्रीम है लेकिन अब इसके अंदर जाफरान ऐड हो गए और रिजल्ट बढ़ गए इसके। तो लोगों ने क्या किया, वो सादा खरीदना छोड़ दी और जाफरानी के ऊपर आ गए। तो पहले ये होता था कि जाफरानी क्रीम ऐसे होती थी और जो सादा क्रीम इस तरह होती थी जो रेगुलर होती थी, और जो जाफरानी होती थी उसके ऊपर स्टिकर लगा होता था केसन जाफरानी क्रीम, ठीक है जनाब, ताकि जो पुरानी रेगुलर यूज करते हैं वो रेगुलर यूज करें, जो जाफरानी इस्तेमाल करते हैं वो जाफरानी इस्तेमाल करें। फिर एक ऐसा वक्त आ गया कि 100 में से 98% लोग जाफरानी खरीदना शुरू हो गए और रेगुलर को छोड़ दिया, तो हमने रेगुलर क्रीम फिर बंद कर दी, ठीक है जनाब। जो केसन की रेगुलर नाइट क्रीम आती थी ना वो हमने बंद कर दी और केसन की नाइट क्रीम जो जारी रखी वो जाफरानी फार्मूला। तो अब हमें जरूरत नहीं थी कि उसके ऊपर स्टिकर चढ़ाते, केसन की जो नाइट क्रीम है बस वो जाफरानी क्रीम है, तो हमने उसके ऊपर से स्टिकर हटा दिया। अब मार्केट में आपके पास जो हमारी क्रीम जाफरानी मौजूद है उसके ऊपर जाफरानी लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पसंद जाफरानी आई थी तो हमने रेगुलर जो सादा थी उसको बंद कर दिया था, और ये जो अब जाफरानी फार्मूला है वो केसन का नाइट क्रीम फार्मूला बन गया, ठीक है जनाब। फिर उसके बाद हमने साबुन लॉन्च किया। अच्छा मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, जाफरानी साबुन अभी शॉर्ट है हमारे पास, क्योंकि हर बंदा जाफरानी क्रीम खरीद रहा है तो हर बंदे को जाफरानी साबुन भी चाहिए, ठीक है जनाब। तो जाफरानी साबुन सिर्फ केसन का है। अब आप हमारी कंपनी की क्रेडिबिलिटी का और हमारी कंपनी की काबिलियत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं
कि जो चीज इस वक्त की ट्रेंडिंग है जाफरानी साबन और जाफरानी क्रीम, वो साबन सिर्फ केसन कंपनी का है। देंगे नंबर हमें कुछ 10 में से आप लोग कि किस पाए की ये कंपनी है, किस लेवल की ये कंपनी है कि जो चीज इस वक्त हर लड़के लड़की हर मर्द की जरूरत है, जाफरानी फार्मूला, चाहे वो जाफरानी क्रीम हो या जाफरानी साबन हो, वो केसन के पास है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब से नहीं है, लोगों को अब पता चला है, लोगों को अब पता चल रहा है कि जाफरान का इस्तेमाल कितना अहम है। और हमको 3 साल पहले ये पता चल सका कि भाई जाफरानी की क्रीम कितनी आपकी स्किन के लिए, और हम आपको हर रोज बताते थे इसके कितने फायदे हैं। जाफरानी साबन इस्तेमाल करें, जाफरानी क्रीम इस्तेमाल करें, इसके बड़े फायदे आपको आप यकीन कीजिएगा कि हमने केसन में जो जाफरानी क्रीम बनाई ना, वो इस वजह से नहीं बनाई कि आपके चेहरे के ऊपर व्हाइटनिंग आएगी या नूर आएगा या आपकी स्किन जो है फ्रेश नजर आएगी, नहीं, ये तो आम क्रीम भी काम कर रही थी। तो फिर किस वजह से? हमने जब इसकी खूबियों को पढ़ा कि ये चेहरे के ऊपर गैर जरूरी बालों का खात्मा करता है जाफरान। जाफरान का इस्तेमाल जब आप किसी ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो साबुन हो, फेस वॉश हो या क्रीम, तो ये गैर जरूरी बालों की जो प्रोडक्शन है उसको इम्बीड करता है, रोक देता है, बिल्कुल खत्म कर देता है या फिर स्लो कर देता है, किसी के स्किन के अंदर खत्म कर देगा, किसी के अंदर स्लो कर देगा। एक ये बेनिफिट था। दूसरा बेनिफिट ये है कि जनाब इसके बाद जो आपको खूबसूरती मिलती है वो जल्दी जाती नहीं है। तो ये दो बड़ी बातें थी जिसकी वजह से हमने जाफरानी फार्मूला बनाया और आज से 3 साल पहले आपको ये बनाकर दे दिया। और अब वो फार्मूला मशहूर हो रहा है और हर कंपनी जाफरानी फार्मूला बना रही है क्योंकि जनाब जाफरान की कितनी अहमियत है। सो जनाब अभी अगर ओरिजिनल जाफरानी क्रीम चाहते हैं तो भी केसन की खरीदिए, ढूंढिए केसन की जाफरानी क्रीम, आपको नहीं मिल रही, दुकानदार से बोले भाई वो आधे किलो वाला डब्बा नहीं चाहिए, 7 लाख वाला जाफरान डब्बा भर के कोई नहीं दे सकता, ठीक है ना। हमें केसन की 17 ग्राम की जाफरानी क्रीम चाहिए। जाफरानी क्रीम नहीं लिखा हुआ डब्बी के ऊपर, नाइट क्रीम लिखा हुआ है, लेकिन जैसे आप सील खोलेंगे, डब्बी खोलेंगे तो क्रीम के ऊपर कोंपले पड़ी हैं, स्टैंड्स पड़े होंगे, 3-4 पड़े होंगे दाने जाफरान के, वो काफी हैं एक क्रीम के लिए। बहुत पूरा असर, बहुत इफेक्टिव और बहुत ही कम मिकदार इसकी जरूरत होती है क्रीम के लिए। अगर ज्यादा डालते हैं तो इसकी तासीर गर्म है, जाफरान की जो तासीर है ना वो गर्म है, तो आपको ऐसा लगता होगा भाई कंपनी ने बड़ी कंजूसी की है, 2 दिन कख डाले हुए हैं, हैं जी और तो है नहीं इसके अंदर, लेकिन वही 2 तिनके जो है ना, वो जो 2-3 तिनके हैं, जब आप उसी क्रीम के अंदर मिक्स करेंगे तो पूरी की पूरी क्रीम पीली हो जाएगी। ये ओरिजिनल जाफरान की निशानी है, यानी कि 2 तिनके आपकी व्हाइट वाली क्रीम को पीला कर देंगे, हल्दी वाला कर देंगे, फिर उसी पीली क्रीम को अपने चेहरे के ऊपर लगाना है, ठीक है जनाब, खुशबू भी बदल जाएगी। असल जाफरान की निशानी क्या होती है, वो जिस चीज में जाएगा उसका रंग भी बदल देगा, जिस चीज के अंदर जाएगा उसकी खुशबू भी बदल देगा। क्रीम की अपनी खुशबू होती है, कंपनियां बनाती है, लेकिन जब जाफरान मिक्स होता है तो ये उसको अंडरग्राउंड कर देता है, वो वाली खुशबू खत्म हो जाती है, क्रीम की जाफरान की खुशबू आपको मिलना शुरू हो जाती है। तो जनाब केसन नेस्ट पाकिस्तान आपकी अपनी कंपनी, आपको ढेर सारा प्यारा बनाने वाली, और वो भी कुदरती एजाज से, हमारे हर एक प्रोडक्ट कुदरती एजाज से, हम आपको आपका मोटापा कम करते हैं, चर्बी को पिघलाते हैं कुदरती एजाज से, आपको सेहतमंद बनाते हैं, आपको ताकत देते हैं कुदरती एजाज से, आपको खूबसूरत बनाते हैं कुदरती एजाज से। केसन आपकी दस्तरस को लेके गई है कुदरत के खजानों तक, कुदरत के खजाने अब आपकी दस्तरस में है। अगर केसन आपकी चॉइस बन चुकी है, अगर आप केसन को कोई कंपनी मानते हैं और आप समझते हैं कि कोई कंपनी है कॉस्मेटिक की जो प्योरली आप लोगों के लिए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट तैयार कर रही है, खालिस प्रोडक्ट तैयार कर रही है और आप लोगों को बगैर केमिकल के प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही है, तो जनाब केसन के प्रोडक्ट आप लोगों को भरपूर फायदे पहुंचा सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट चुनेंगे आप, जैसे कि जाफरानी क्रीम और जाफरानी साबुन, अभी तक आप लोग, आप में से 80-90% लोग साबुन को कुछ नहीं मानते, सिर्फ क्रीमों के ऊपर जोर लगाया हो,
लगाया होता है हर किसी ने, हर कोई कहता है क्रीम क्रीम क्रीम। साबुन को कोई तीन में न गिनता है न तेरह में गिनता है। देखिए केसन नेचुरल पाकिस्तान के इस वक्त 7 किस्म के साबुन हैं।

जी जनाब, सात किस्म के साबुन केसन की जो आप लोगों के पास मौजूद है, ये हमने एक साथ साथ नहीं बना लिए थे। हमने सबसे पहले गोट मिल्क बनाया, मिल्की सोप, जो कि भाई सर्दी में कोई भी बंदा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके पास मिल्की साबुन ना हो। आपकी स्किन की मुकम्मल हम जिम्मेदारी उठाते हैं। अगर आने वाले 6-7 महीने आपने केसन का मिल्की साबुन ले लिया, फिर आप अपने रंग को निखरता देखिएगा, अपनी स्किन को सॉफ्ट होता हुआ, नर्म मुलायम होता हुआ देखिएगा और अपनी स्किन को मॉइस्चराइज होता हुआ देखिएगा। साबुन बाजार में बिकने वाले जो होते हैं वो सिर्फ आपके चेहरे को धोने का काम करते हैं, इससे बढ़कर काम नहीं करते। केसन के साबुन आपके चेहरे के ऊपर असर छोड़ते हैं। कोई भी साबुन आप उठा लें, केसन का मिल्की साबुन, केसन का जाफरानी साबुन, केसन का राइस शाइन साबुन, केसन का उपटन साबुन, केसन का कोजिक एसिड साबुन, ये सारे केसन का टी ट्री साबुन, हमारे पास जो वैरायटी है वो किसी भी कंपनी के पास नहीं है। बिल्कुल अलन अलान कहते हैं जो वैरायटी सोप्स की केसन के पास है, इस वक्त केसन किंग है सोप्स में। केसन कंपनी किंग कंपनी मानी जाती है और यही वजह है कि हम वो पहली कंपनी है जिसने आपको सोप बेस भी प्रोवाइड कर दिया। डेरस मिल खान के लोग समझते हैं कि सोप बेस क्या होती है, ठीक है जनाब, क्या होती है सोप बेस। हमने हाफ केजी के अंदर आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है एंड दिस इज वेरी फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान कि आप लोगों को हमने दो वेरियंट सोप के अंदर, सोप बेस के अंदर प्रोवाइड किया है। एक एक्नी सोप बेस है और एक जो है वो ग्लैसरीन सोप बेस है। जो लोग, जो लड़कियां साबुन बनाती हैं घर के अंदर और फिर सेल करती हैं, या ब्यूटी पार्लर वाली हमारी बहनें सुन रही होंगी, तो भाई अब आपको लाहौर, कराची, इस्लामाबाद या ऑनलाइन सोप बेस मंगवाने की जरूरत नहीं। आपके अपने इलाके, आपकी अपनी कंपनी केसन इतनी पावरफुल कंपनी है, इतनी स्ट्रांग हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने आप लोगों को सोप बेस तक प्रोवाइड कर दिया है। और इस वक्त इतनी ज्यादा डिमांड है डेरस मिल खान में, आप जिस भी स्टोर के ऊपर जाएं हर दुकानदार मांग रहा होता है केसन की सोप बेस, केसन की सोप बेस, केसन की सोप बेस। तो भाई केसन सोप बेस दो तरह की हमारी आ चुकी है आप लोगों के पास, एक एक्नी सोप बेस है और एक ग्लैसरीन प्योर ग्लैसरीन सोप बेस है। ये आपको, और फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तानी है कि ये आपको आधे किलो के अंदर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। हाफ केजी के अंदर केसन की सोप बेस आप लोगों के लिए मौजूद है, हाफ केजी के अंदर, और ये आपको मिलेगा तकरीबन जो है 700 से 750 का आधा किलो मिलेगा। डेरस मिल खान में आप राजा जनरल स्टोर, हाजी गुल जनरल स्टोर, मदीना वैरायटी, ठीक है जनाब, इसके अलावा शीश महल, अलफरीद कॉस्मेटिक, मक्का कॉस्मेटिक, फैमिली शॉपिंग सेंटर, अमाना अरसेरा, फारूक अरसेरा, विकी कॉस्मेटिक गुलजार मस्जिद के सामने है, गुलशन कैश एंड कैरी, A1 कॉस्मेटिक, ये बड़े बड़े जितने भी शॉप्स हैं इन सब के ऊपर आपको केसन की सोप बेस जो मिलती है आपको हाफ के जी के अंदर, एक्नी प्लस ग्लैसरीन सोप बेस आपको मिलेगी 700 से 750 का आधा किलो है। इसके अलावा सोप्स के अंदर हमारे जो है सात किस्म के साबुन है, ग्लूटा व्हाइट का सोप, ग्लूटा की क्रीम और ग्लूटा का फेस वॉश, इस वक्त मार्केट का नंबर वन केसन की ग्लूटा में हमने, हम वो पहली कंपनी है जनाब कि हमने वाहिद कंपनी है जिसने तीनों चीजें एक साथ लॉन्च की हुई और चौथी भी हम लॉन्च कर रहे हैं ग्लूटा के अंदर। ग्लूटा का साबुन केसन का मौजूद है 250 रुपए में मिलेगा, ग्लूटा व्हाइट का फेस वॉश 450 रुपए में अवेलेबल है और ग्लूटा व्हाइट की डे एंड नाइट क्रीम 350 में मौजूद है। ग्लूटा व्हाइट की हैंड एंड फुट व्हाइटनिंग क्रीम बहुत जल्द इसी महीने हम आप लोगों के देने जा रहे हैं। सो केसन पाकिस्तान की पहली कंपनी होगी भाई जिसके पास ग्लूटा व्हाइट रेंज के अंदर सारी रेंज आ गई है, हैंड एंड फुट क्रीम भी, फेस वाली क्रीम भी, ग्लूटा व्हाइट का साबुन भी और ग्लूटा व्हाइट का फेस वॉश, और सबसे सस्ते वेरिएंट ग्लूटा व्हाइट का फेस साबन आपको 400 से कम कहीं नहीं मिलता है सिवाय केसन के, और केसन का 250 रुपए का है। ग्लूटा व्हाइट का फेस वॉश आपको 600 से कम कहीं किसी का नहीं मिलता है, केसन का 450 का है। ग्लूटा व्हाइट की डे एंड नाइट क्रीम आपको 500 से कम मेरे ख्याल में के 450 से कम किसी कंपनी की भी नहीं है, केसन की 350 रुपए की है। तो भाई अगर आप नए दौर का फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने चेहरे के ऊपर तो केसन की
ग्लूटावाइट रेंज का इंतखाब कीजिए, ठीक है जनाब। और अगर आप क्या कहते हैं, जिस तरह रिवायत एक कल्चर है, ट्रेडिशन को हम देखते हैं, तो जाफरानी फार्मूला जो कि इस वक्त बहुत ज्यादा इन है और हर खवातीन, हर औरत जो इसको इस्तेमाल करना चाहती है, तो भाई ओरिजिनल आपको जाफरानी फार्मूला चाहिए तो वो केसन का है ओरिजिनल, ठीक है जनाब। जिसकी क्रीम आपने खोलनी है, क्रीम के ऊपर आपको ये जाफरान पड़ा हुआ मिलेगा, आपकी आंखें देखेंगी, चाहे तो इसको स्मेल कीजिए, अपने हाथ की मदद से इसको क्रीम के अंदर मिक्स कीजिए और अगले दिन से फिर इसका इस्तेमाल शुरू कीजिए। बाज़ुकात ये होता है कि जाफरान क्रीम के ऊपर ना थोड़ा सा ऐसे मिक्स हुआ पड़ा होता है, यानी कि जहां पर तिनका पड़ा होगा जाफरान का, उधर वो रंग पीला फैला पड़ा होता है, इसका मतलब है कि जाफरान जो है वो जस्ट वो उसके अंदर जो है तकरीबन मिक्स हुआ पड़ा है, तो आपको उसी वक्त मिक्स करके, अगर मुकम्मल तौर पर मिक्स हो जाए तो उसी वक्त क्रीम का इस्तेमाल शुरू कर दे, नहीं तो अगले दिन से इस्तेमाल करेंगे तो और ज्यादा आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। जाफरानी क्रीम 320 रुपए की है केसर, लेकिन मैं आपको एक दफा फिर से बोल दूं, हमें बार बार दुकानदारों की कॉलें आ रही हैं कि उसके ऊपर स्टिकर लगाएं या कुछ करें, लोग नहीं मानते, वो कहते हैं ये तो नाइट क्रीम है, तो केसन की जो नाइट क्रीम है, आप सिंपल बोलेंगे केसन नाइट क्रीम तो वही जाफरानी क्रीम है, क्योंकि हमने रेगुलर बंद कर दी है, जो सादा क्रीम आती थी वो हमने बंद कर दी है, और अभी जो क्रीम हमारी आप लोगों के पास मौजूद है वो जाफरानी क्रीम ही है, जिसका नाम केसन नाइट क्रीम है, साथ में केसन का जो है जाफरानी साबुन, जो जाफरानी क्रीम है ना उसके अंदर सिर्फ जाफरान है, हल्दी और संदल नहीं है, ठीक है ना। जो जाफरानी क्रीम है उसके अंदर सिर्फ जाफरान है, लेकिन जो साबुन है केसन का उसके अंदर जाफरान भी है, संदल भी है और हल्दी भी है, ठीक है जनाब। तो इसके अंदर जाफरानी साबुन बहुत ही कमाल की हमारी प्रोडक्ट है, आप क्रीम ना भी लगाए ना, मैं आपको कहता हूं आप क्रीम ना भी लगाए ना, ये आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देता है। हमारा जो जाफरानी साबुन है, आप यकीन कीजिए कि बहुत ही कमाल की प्रोडक्ट है जनाब। कॉलर्स ले रहे हैं, कॉलर्स को मौका दे रहे हैं जनाब, और 03449363366 के ऊपर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं 03449363366 03449363366

0: जी जनाब, आप लोग कॉल कर रहे हैं हमें 0344-936-3366 पर। पहले कॉलर हमारे साथ हैं जी, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम खलील, बेहाल है
0: जनाब, क्या हाल है जी? ठीक ठाक
1: खैर शुक्र है। तो मैं रेड सलामिया में हूँ, बंद थी हूँ नाम अल्लाह के बाद।
0: अच्छा रेडियो की आवाज बंद थी, फिर कितना डेरे या टांग के बीच?
1: फरमान
0: अच्छा प्रोग्राम सुंदर पहले दफा कॉल की पहले भी कदम कॉल की रमजान मार्केट
1: पहले गया डबर नजदीक डबर है शैम्पू को मैं शैम्पू गिनान तेल गिनान ताकत प्लस।
0: अच्छा बात किस दूसरी मिले सिर्फ एक मिली उसी
1: मैं स्पेशल सरदाम प्लस।
0: अच्छा जी
1: उत्तर में आ गया एक दुकान का पता खींचा हुआ शैम्पू पहले साथ दही का पता खींचा त्रीज लंबा गीतम ना मुजीब भाई का।
0: हाँ हाँ बिल्कुल मंसूर जनरल स्टोर
1: तो मैं को एडिटे हूँ तो शैम्पू मैं को मिले ते तेल ही मिले ते ए भी दिखा ताकत
0: माशाल्लाह माशाल्लाह तुम्हारी तस्वीर मेरे पहुंची पाई है माशाल्लाह दाढ़ी मुबारक है ना तुम्हारी
1: जी दाढ़ी मुबारक डब्बा रुमाल काले कपड़े।
0: हाँ बिल्कुल तुम्हारी तस्वीर मेरे को पहुंची पई है ज़ारा वाला परफ्यूम ही नाल तो उन्होंने फ्रिज दिता है मेरा ख्याल है।
1: मैं जी आज स्पेशल गया हम तुम्हारे गया तो मैं तो तुसे अगर ये करो है तो ना डब्बरे के पास सामान भेजो जा तो वैसे सार लूंदा थी रहना है
0: डब्बरे के बीच इब्राहिम जरा बैटरी वाले भाई बैठे सोलर बैटरी वाले उन्होंने को सामान होना तो है सादा
1: इब्राहिम
0: मेरे ख्याल सोलर बैटरी वाले भाई बैठे उन्होंने को सारा सामान
1: शैम्पू को
0: अच्छा उन्दे को शैम्पू वगैरह बस थोड़ा बहुत सामान रखे ने। चलो जी उन्होंने गाल के बाकी पहली दफा तुसा इस्तेमाल करें दे पहले सारी कंपनी को
1: जी जी पहली दफा करें ना पे ताकत पाद की दाम ते दूध ते तेल की दाम तो मुक्ति की ना स्प्रे भी ते दे मैं के रेड को सब साथ ने मैं इस्तेमाल केरे तरीके ना मैं करूं।
0: अच्छा चलो ठीक है बंद करे सो बंद न तो पूरे सेना केरे तरीके ते इस्तेमाल करना है ठीक है सही फरमान भाई तो मत मेहरबानी शुक्रिया जनाब। और बिल्कुल जनाब ये उस दिन आए हुए थे और ये जो है 1000 के ऊपर जो है सॉरी 1000 नहीं मेरे ख्याल में 1500 या 2000 की खरीदारी के ऊपर मंसूर जनरल स्टोर मुजीब भाई जो है आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फरमान भाई आपने शैम्पू और ऑयल खरीदा है रात को आपने तेल लगाना है 6-7 घंटे लगा रहे उसके बाद आपने शैम्पू से धो लेना है ठीक है। ये दो प्रोडक्ट आपने खरीदे हैं इसके अलावा आपने खरीदा है ताकत प्लस तो ताकत प्लस को आपने रात को सोते वक्त 1 गिलास दूध के अंदर 2 चम्मच आपने ताकत प्लस प्लस के मिक्स करके आपने इस्तेमाल करना है। चौथी चीज आपको फ्री मिली है वो मिला है परफ्यूम ज़ाहरा का वो भाई जहां जुमा हो खुशी हो जा रहे हैं जहां पर भी अपने जिस्म के ऊपर लगाए और एंजॉय करें। जनाब अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम क्या जनाब
0: अंकल असद हमारे साथ कैसे हैं मोहतरम ठीक हैं आप?
2: खुदा करे खुदा वो शुभ वाला है जो तुझे रास ना हो
0: वाह
2: खुदा खुदा वो खुदा करे कि तेरा दिल कभी उदास ना हो
0: वाह जी कमाल
2: तुम्हारे धुआं पे बरसे तुम्हारे धुआं पे बरसे कबूलियत की बारिश
0: वाह
2: और तुम खुदा के सिवा कभी किसी का मोहताज ना हो।
0: आमीन आमीन आमीन जुमा आमीन बहुत शुक्रिया कैसे
2: यही दुआएं आपको देते रहते हैं एक मैसेज में दुआ आपको भेजिए।
0: हाँ आपने बिल्कुल मैसेज किया हुआ है उसके अंदर भी बहुत प्यारी कल मैंने पढ़ा था वो मैसेज ना आपके यहाँ रिकॉर्डिंग चल रही थी लेकिन मैंने ऑन एयर पढ़ लिया था तो आज भी उसको पढ़ लूंगा। और आप खैरियत से हैं ठीक ठाक हैं?
2: बड़ी मेहरबानी आपको दुआएं देते रहते हैं कामयाबी के लिए।
0: बहुत शुक्रिया जनाब बहुत शुक्रिया। और कुछ कहेंगे केसन के किसी प्रोडक्ट के हवाले से? असद अंकल हमारे साथ जी जनाब, चलो जी चले गए हैं। तो फरमान भाई जो डबरा से आए हुए थे जनाब, और टांग के अंदर जो है, इसलिए टांग वालों से मुखातिब है कि लोग वहां पर परेशान है भाई, एफएम के ऊपर हमारी चीजें नहीं मिलती हैं, तो क्यों ना को तंग करें दे को वला वन के दरवाजे खड़के दे बेचारा दे नींदरी उठ दिन दोपहरा को दरवाजे टांग दिन बिरा इतना सामान नहीं मिलता के संदा दुकाना ते मिलता है जी। तो भाई चक्कर ना लगाया करें एफएम के, एफएम के ऊपर हमारी चीजें नहीं मिलती, बाजार में जाए सदाम के अंदर जो है मुजीब भाई वहां पर सकते हैं जी।
1: मुलाजिम
0: सामान पहुंच गए बिरा तुम्हारे को
1: समान आ जावे सी।
0: अच्छा कल कैसे पहुंच गए पहले मैं कोई दसो
1: ताकत
0: आलिए ठीक है
1: मैदे
0: आला सिरप हाजमा कंट्रोल सिरप ही पहुंच गया तारे कोल
1: क्रीम है
0: क्रीम केरी काली डब्बी आली या चिट्टी डब्बी आली काली डब्बी आली भाई रणवाल वालो आजकल दी वायरल क्रीम यानी के जाफरानी क्रीम तो भी पहुंच चुकी है फक्की आली दवाई वो तो क्रीम है काली कलर दी जिन्हें तो हाथ बड़ा पियो सी और हाथों पैर को चिट्टा करने वाली क्रीम है सारी केसन हैंड एंड फुट वाइटनिंग क्रीम वजन वधावन आलिए पेट को घट करन आलिए चर्बी पिघलावन आलिए ठीक है स्टिकर फट गया हाथ नजर आ गया ढिड नजर ना आंदा पियो बहरहाल हे हुआ फकी पेट को कम करने वाली वजन को कम करने वाली ठीक है मुलाजिम भाई
1: ठीक है
0: मेहरबानी सारे दोस्तों को सलाम। और जनाब ये है रनवाल के साथ जो है सुहेल मदरसा है और वहां पर हमारे भाई की दुकान है मुलाजिम दुकानदार, तो इनके पास हाजमा कंट्रोल सिरप पहुंच चुका है भाई वजन कम करने वाली वजन बढ़ाने वाला फार्मूला प्लस पहुंच चुका है। इसके अलावा जो है और क्या क्या पहुंच रहा है ऐसा सब पहुंच रही है, अभी ऑयल भी पहुंचेगा बालों को प्यारा बनाने वाला, शैम्पू भी पहुंचेगा बालों को खूबसूरत बनाने वाला जी। जनाब अल मदीना जनरल स्टोर है सदम प्लाजा, सदम प्लाजा जो है टांग के अंदर बेसमेंट जो बेसमेंट के नीचे है जी, बेसमेंट के नीचे बेसमेंट कौन सी होती है मार्केट के नीचे जो बेसमेंट है जनाब वहां पर है अल मदीना वैरायटी स्टोर या जनरल स्टोर है जनाब, वहां पर आपको केसन के सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। इसके अलावा सदम प्लाजा के अंदर है शॉप नंबर 3-4 ठीक है जनाब, शॉप नंबर 3-4 मंसूर जनरल स्टोर, इसके साथ साथ अरबाब जनरल स्टोर भी है, साथ में इमरान भी है, सबके पास केसन के प्रोडक्ट मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।
3: हेलो
0: जी अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम
0: जी, कौन है हमारे साथ?
3: मैं अमारा बात कर रही हूँ।
0: अमारा बात कर रही है, कहाँ से? डेरा से या फिर टांग से?
3: टांग से।
0: अच्छा टांग से हमारा बात करें। हमारा कैसे हैं? पहले तो हम आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम की में, आप पहली दफा तशरीफ लाई हैं हमारे शो में।
3: जी हाँ पहली बार। अच्छा कितनी बार फोन तो मिला है दिन के तो, लेकिन आप लोगों का नंबर नहीं लगता।
0: अच्छा हाँ बस नंबर बिजी होता है इस वक्त। तो प्रोग्राम हमारा सुन रही हैं काफी अरसे से आप या अभी सुनना शुरू किया है? हमारा हेलो जनाब आवाज जो है वो गुम हो चुकी है, अगर इनको मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो अपनी आवाज दीजिएगा। हेलो हेलो जी जी हमारा, मैंने कहा कितने अरसे से सुन रही है हमारा प्रोग्राम, कॉल ब्रेक हो चुकी है। टांग के अंदर जनाब बिलाल मार्केट के अंदर नसीम जनरल स्टोर है, वहां पर भी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा दुबई जनरल स्टोर है, कराची जनरल स्टोर है, सिटी जनरल स्टोर है, अब्दुल्ला जनरल स्टोर है, ठीक है जनाब। इन तमाम दुकानों के ऊपर आपको केसन के प्रोडक्ट मिलते हैं। मेन हमारे डिस्ट्रीब्यूटर जो बैठे हुए हैं सदाम प्लाजा के अंदर, आप वहां पर हमारे प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं। दुकानदार हजरात हासिल कर सकते हैं। और केसन के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से होता क्या है यार जी, क्या होता है केसन के प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से, कॉलर से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: मोहतरम क्या हाल है, ठीक है आप, खैरियत से हैं?
4: खैरियत अल्लाह का बहुत एहसान है करम है।
0: क्या नाम है भाई का?
4: अब्दुल जलील टांग से बात कर रहा हूँ।
0: अब्दुल जलील साहब टांग से बात कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम कॉल किया भाई ने हमारे शो में?
4: कॉल फर्स्ट टाइम मिली है, मैं तो एक महीने से ट्राई कर रहा हूँ।
0: ओए होए होए होए होए, एक
4: प्रोग्राम सुनता हूँ, एक महीना हो गया है।
0: एक महीना हो गया और हमें आज मेरा,
4: लेकिन असल में बात ये है कि ये आप नंबर जो है ना बहुत कम बताते हैं, इस वजह से हम सुनते रहते हैं लेकिन कॉल नहीं मिला सकते, पता नहीं होता कौन से नंबर पे कॉल करनी है।
0: अच्छा, असल में इसलिए कम बताते हैं कि अब तो लोगों ने याद ही कर लिया होगा, सेव भी कर लिया होता है, तो फिर टाइम
4: असल में बात ये वजन कि जो आपके डेली के कॉलर है ना वो तो रोजाना करते रहते हैं ना कॉल, उनको तो नंबर पता है।
0: हाँ हाँ बिल्कुल,
4: जो नए सुनने वाले होते हैं ना उनको मौका नहीं मिलता क्योंकि उनको नंबर पता नहीं होता और आप दोहराते हैं नहीं।
0: हाँ ये ज्यादती है, वैसे दोहराना चाहिए। चलो
4: इस वजह से जो है ना आज आपने नंबर दोहराया, मैंने फौरन डायल करके आपको कॉल कर दी।
0: अच्छा चलो ठीक है, आज आपका भी मसला हल हो गया। तो भाई क्या करते हैं आप, पढ़ते हैं, दुकान है, क्या करते हैं?
4: मेरी दो शॉपे हैं, एक तो बिलाल मार्केट है बनी रोड पे।
0: अच्छा जी ठीक है,
4: और एक जो है ना बर्की टावर बना है अभी ये चौक पे।
0: अच्छा जी, किस चीज की दुकान है? कॉस्मेटिक्स की है?
4: कॉस्मेटिक्स है, परफ्यूम है, वगैरह सामान हमारे पास होते हैं, बाकी तो सब कंपनियों के आइटम हमने रखे हुए हैं।
0: अच्छा जी,
4: और इंशाल्लाह भी नियत की है कि केसन की आपकी मोहब्बत में इंशाल्लाह ये भी शुरू करेंगे।
0: जरूर जरूर शुरू करें, लोग ढूंढ रहे होते हैं दुकानें, अभी लोगों को नहीं मिल रही, तो आप आ गए माशाल्लाह, आपसे शो के बाद भी हम रब्ता कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है भाई जान, और परफ्यूम केसन के भी हैं अकबर और ज़ारा,
4: हाजी सरबस्तान के साथ तो पुराना काम है।
0: अच्छा, फिर उनके साथ काम है तो फिर तो मसला नहीं होना चाहिए कोई भी आपको।
4: आप आइटम जो है ना सारे उसके पास से ही मिलेंगे ना?
0: सब प्रोडक्ट जरबत खान के पास आपको मिल जाएंगे।
4: अच्छा, कोई परसेंटेज वगैरह का भी पता होता है क्या? परसेंटेज देते हैं दुकानदारों को?
0: परसेंटेज जो टीपी रेट होता है हमारा, ओवरऑल जो कंपनी का टीपी रेट है, आपको भी उसी रेट के ऊपर चीज मिलेंगी वहाँ पर।
4: अच्छा
0: हाँ, परसेंटेज तो डिफरेंट होती है, वो हम आपको यहाँ पर नहीं बता सकते। ठीक है, तो ऑफ एयर आपसे बातचीत कर लेंगे तो फिर आपको बता देंगे। अच्छी परसेंटेजेस होती हैं केसन के अल्हम्दुलिल्लाह, और आपको खुश करने वाले होते हैं। ठीक है जी,
4: चलो ठीक है इंशाल्लाह। केसन हमने अभी तक रखा नहीं है।

0: सेकेंड ईयर
1: फिर हो गया है, आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ डेली।
0: अच्छा जी ठीक है,
1: तो अभी इंशाल्लाह रखेंगे। जरूर खान भाई हमारे पुराने दोस्त हैं, उससे काम करते हैं, बाकी सब कंपनियों के लिए रखते हैं।
0: बस केसन भी उनके पास है, फिर आपको तो कोई जरूरत, नसीम की दुकान है बिलाल मार्केट में।
1: नसीम की तो है बिलाल मार्केट में, और दूसरा हमारा है अरबी ब्रांड फॉरन स्टोर।
0: जी अरबी फॉरन जनरल स्टोर,
1: फॉरन जनरल स्टोर बर्की टावर टांग, नया प्लाजा बना है तकरीबन
0: बर्की टावर टांग। ठीक हो गया, बस आप अवेलेबिलिटी कराएं और फिर लोगों को आता देखें अपने पास इंशाल्लाह। ठीक है भाई जान,
1: इंशाल्लाह।
0: बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू सो वेरी मच जनाब। भाई थे हमारे साथ और कहते हैं कि आज आपने कॉल जो है नंबर बताया तो हमने मिला लिया। तो भाई टांग के अंदर थोड़ा सा जो है

0: लोगों को प्रॉब्लम आ रही है वैसे डेर असमल खान में तो अलहमदा हर जगह आपको मिलेगी। बिलाल आ चुके हैं हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो बिलाल की आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही।
1: वालेकुम सलाम खलील भाई, हाल सुना के तबीयत?
0: अलहमदुल्ला जी, अलहमदुल्ला, अल्लाह का शुक्र है। कौन इन सारे नाल अपना नान से सही?
1: अली भाई
0: यार, अली भाई आज तो बहुत एच डी ते बहुत उच्ची आवाज पर आनी पई है। कैसे खा दिख रहा है?
1: ताकत प्लस निकते है ना,
0: ताकत प्लस तो नहीं पीती खड़ा है कि तू सही
1: समझ ताकि प्लस जोर आनी पई है।
0: अली भाई की हाल है? चंगे वे तू
1: अलहमदुल्ला
0: कितना गलत है वध्या वे कहते हैं जी सारे को
1: नंबर नहीं मिल रहा आजकल तो सारे नंबर है तो बिजी थी कि
0: हां बिजी थी कि हर बंदा कोशिश करें दे केसन दे घंटे कॉल करे तो से देखो भाई आधे पैन के एक महीने को कॉल नहीं मिलती पई है उनको को पहले एक भाई सिस्टर
1: है जरा नहीं पता है तो थक गए ऐसे जरा तेरा नंबर नहीं मिल रहा और मजा नहीं रहता पिछू में तेरे घंटी की थी वो पिछू नहीं मिल रहा जी के हिसाब है
0: पिछू ना मिल जाए घूम
1: वापस खड़ा आवे तो सारे नाल मजा नहीं आया।
0: अच्छा जी, बहुत सारे लिसनर ऐसे उन्होंने के कॉल अगर उन्होंने न मिले तो उन्होंने को मजा ही नहीं आंदा कि भाई कॉल तो नहीं
1: मिली। बिल्कुल खलील भाई का समय है ना, लोग कहते हैं ना।
0: हां जी,
1: प्रोग्राम दे रहे शौकीन की सही जो वाला
0: मजा ही नहीं आंदा। भाई एको नंबर है सारे को चार चार नंबर तो हिन्नी के ऐसे एट ए टाइम गिनू मतलब है
1: ना, चार चार बस मजा नहीं करे।
0: हां बस असल च प्रोग्राम में त्रै स्टेशन ते होंदा ना तो त्रै स्टेशन दे लोग कोशिश की थी पे उन्होंने कॉल मिलावण दी। सिर्फ पटांग दा होवे तो टांग दे लोग को संसार दा तो हुन डेरे दे लोग ही कला मिलन दे पैन पहाड़ पे तो बिना काम दे तो ओखा थी ने इन घंटे काल मिलावना जरे।
1: जी जी जी, आजकल तो सारा जेरा तेरा प्रोग्राम करे जे ओ दूजो प्रोग्राम मिले उनको।
0: जी
1: और भी प्रोग्राम मिले उनको।
0: हाँ हाँ बिल्कुल, बस आजकल मेरा शो आपे मैं आपे गिर सही था ते बाकी जो रहे दूसरा ठीक ठाक है खैर खरीयत नाल सही
1: अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करने थे कुछ स्पेशल ते तेरा प्रोग्राम बहुत मजा देने।
0: अच्छा जी, मजा देना पे आंदे। चलो जी
1: जिंदाबाद
0: जिंदाबाद दी ना कम नहीं नशिया साडे शरबत पीता होसी ज़फरान वाला माजून ही खादा होसी। हाँ
1: मेरे ते हाथ दाने चाहे कोई पता नहीं लगता बिल्कुल खलील भाई कल पता करे सा।
0: हाँ मंसूर चंद स्टोर ते वंजो तो उन्हें कहो को केसन दी सावे रंग वाली क्रीम क्रैक रिलीफ क्रीम दो। ठीक है सर,
1: क्रैक रिलीफ क्रीम
0: 250 रुपए दी 250 रुपए दी आसी उको गिन के लाओ तो आदि खारिश एलर्जी भी खत्म थी वैसी दाने भी खत्म थी वैसे इंशाल्लाह जख्म भी खत्म थी वैसे
1: माशाल्लाह इंशाल्लाह स्पेशल ही करे सो।
0: हाँ वन्यो गिनो तो इस्तेमाल करो। ठीक है अली भीरा,
1: इंशाल्लाह सारे दुआ को जेरा मेरा तेरा प्रोग्राम
0: सारे दुआओं को सारे सारे दुआओं को भीरा हो। ठीक है जी,
1: बिल्कुल सारे को दुआए तो सलाम हो गए।
0: ओ मेहरबानी, शुक्रिया जनाब अली भाई हमारे साथ। टाइम बहुत ही शॉर्ट होता है हमारे पास जनाब, आप लोगों के मैसेज से मैसेजेस को भी इंक्लूड करना है और साथ में आपको एड्रेस भी बताने होते हैं। डेरा में आप लोग हमें सुन रहे हैं, मैं आप लोगों को बता रहा था कि भाई केसन नेचुरल पाकिस्तान की 100 बेस आ चुकी है। भाई 100 बेस हाफ केजी के अंदर है हमारी 100 बेस और आपको हर जगह मिलेगी 100 बेस। बेसिकली अगर आप ऑनलाइन मंगाते हैं तो ऑनलाइन इसका 1400 से 1500 का किलो है और घर तक पहुंचते पहुंचते आपको 1800-1900 का किलो पड़ जाता है। लेकिन ये भी कोई ऐसी बात नहीं है, पैसे लगते रहते हैं लेकिन असल चीज है कि जो 100 बेस आप तक पहुंची है क्या वो सही काम कर रही है, है जनाब, क्या वो सही साबुन बना रही है, उससे झाग पैदा हो रही है कि नहीं हो रही। तो भाई केसन की 100 बेस क्रीमी लेदर के साथ है यार, आय हाय हाय क्रीमी लेदर बोलते हैं इसको, ऐसी झाग जिसमें क्रीम महसूस हो, सिर्फ बुलबुले ना हो। आप चेहरे को लगाएंगे हमारे साबुन तो आपको ऐसा लगता होगा जैसे आपने क्रीम को मिक्स किया हुआ है। ये क्रीमी लेदर होती है केसन की, चाहे साबुन है चाहे केसन के जो है सोप बेस है। तो जनाब एक और बंदा हमारे साथ है, बंदा है ना चीज नहीं है कहीं। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम जनाब।
0: बिलाल मैं असा केसन सीजन 3 शुरू करना है, ठीक है सही, ਸਾਕੂ ਬਿਲਾਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਾਲ ਆਪਣੇ ਬੰਦਾ ਕੋ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇ ਸੀ ਡੇਰਾ ਦੇ ਬੰਦੋ ਕੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤਰੇ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਤਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਟਾਂਕ ਡੇਰਾ ਤੇ ਪਹਾੜਪੁਰ ਅਸਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇ ਸੂ 15 ਬੰਦੇ ਅਸਾਂ ਰੱਖਣੇ ਕੇਸਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿਚ 15 ਬੰਦੇ ਟੋਟਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸਹੀ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋ ਅਸਾਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਗਲ ਬੜਸੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਸੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕਾ ਆਊਟ ਕਰੇ ਸੀ ਆਖਿਰ ਤੇ ਕੇਸਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਵੈਸੀ ਉਹ ਕੋ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਾਜ ਪਵੇ ਸੂ ਉਹ ਕੋ ਜੁੱਤੀ ਪਵੇ ਸੂ ਉਹ ਕੋ

0: ये ख्याल
1: है शुगर शुगर तो लग रही है कि के ये काम कर रहे ना ये शुगर लेते ही ना आज के जरा शुगर होने ना इतना
0: निंदरी भूल वेंदी करणी है कि नहीं करनी रात को निंदर डूब डूब दीवार लोगों को रोटी भूल पाने रोटी भी खावनी है कि नहीं खावनी हर वेले 23 घंटे ही घंटे का इंतजार कि 1 घंटा किर लिया 23 घंटे उनके बारे सोचना खैर रोजाना बंदे आंदे पे चलो ठीक है तैयारी करो सही तुसा भी ते असे मत सीजन 3 शुरू करण आले तोरी जे हाजरी है बहुत जरूरी आ मेहरबान पाकिस्तानी तो उमे गेट ते खड़ा है साहब बंदूक चा के केरे अरसे को काफी अरसे को
1: एक घर ने जिले ने
0: असे जो को गेट ते खड़ा है सिक्योरिटी गार्ड के संगर ठीक है
1: अच्छा दीरा ए दसो जो पारपुर जवान में इकट्ठे है सारे इकट्ठे ठीक है
0: हां पारपुर वाले बस इकट्ठे हैं मैं देर ना कोई इकट्ठा करें टांग ले उनों को पकड़ के इकट्ठा करे सो सा ठीक है वो मेहरबानी टाइम शॉर्ट है सारे को बात गप शप मरे सू ठीक है
1: केसन
0: शैम्पू फिलहाल तो मिलसी नहीं उका तो शॉर्ट ही वेला ला उका तो शॉर्ट है साको आप इस्तेमाल करने का नहीं मिलता पिया सा पे मालिक थी कि साको बड़ी मुश्किल से रहना बोतल खत्म थी होना सादे भी इंशाल्लाह तो को देने जी जनाब और ये हमारे साथ बिलाल भाई थे हमारे डेर इस्माइल खान के आरजे नहीं है बल्कि लिस्नर है मैं जल्दी से मैसेजेस को पढ़ता हूँ केसन का शैम्पू जो है जहाँ अवेलेबल है सो है मिल रहा है तो ठीक है लेकिन हमारे पास खत्म दी है जी पिछले 15 दिनों से शॉर्ट है और उसकी एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से वो शॉर्ट चल रहा है और हम उस शॉर्टेज को कम करने की कोशिश कर रहे हैं भरपूर कोशिश में लगे हुए हैं क्योंकि बहुत ज्यादा ऑर्डर इसके आ चुके हैं हमारे पास और उस शॉर्टेज को हम कम करने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। अंकल असद टांग से हमारे साथ हैं और कहते हैं कि आपके लिए खास दुआ खुदा वो सुबह ना लाए जो तुझे रास ना आए खुदा करे तेरा दिल कभी उदास ना हो। ये बिल्कुल उन्होंने जिस तरीके से कॉल के अंदर मुझे बताया तो वो उन्होंने लिखा हुआ है आपके मोहब्बत का बेहद शुक्रिया। आमिर अमान पाकिस्तानी हमारे साथ हैं खलील बिरा हाल सुना मैं आजकल चंगा बढ़ गया हाँ और लिसनर जेरी मेरे गिले कीते हन हूं तारीफ करे बाकी गाल केसन दी मैदा भिरा केसन को तारीफ दी जरूरत कोनी अगर कोई आके आख देवे जो मैको केसन ने रिजल्ट नहीं दिता उक मेरे हवाले करो मैं पूछा मेरी भेण या मेरा भिरा ही की दीवार मरना ही भी कूड़ ना मार जनाब ये हो नहीं सकता कि केसन नाम को रिजल्ट ना दे यार जितनी मोहब्बत के साथ केसन आप लोगों को प्रोडक्ट बनाकर देती है ना शायद इतनी मोहब्बत कोई आपके साथ ना करता और वो प्रोडक्ट आपको रिजल्ट ना आते हैं। जैसे मैं जाफरानी साबन की बात कर रहा हूं जाफरानी साबन से आप बाल भी धो सकते हैं ये साबन जाफरान संदल और हल्दी से बना है ये बालों के लिए भी बहुत ही ज्यादा मुअसर है ठीक है ना बालों को जड़ों से मजबूत करता है जाफरानी साबन बेसिकली ये चेहरे के लिए है लेकिन ये बालों की सेहत के लिए भी बहुत ही जबरदस्त है। जाफरानी साबन 250 रुपए का है हमारा ग्लूटा का साबन भी 250 का बाकी सारे 200-200 रुपए के। हेलो भाई पहला पहले अपना नाम तो बता दे आज मेरा पहला दिन है इस शो में। जी जनाब मैं ना अपना नाम बताता हूँ ना ही अपना नंबर बताता हूँ बातें इतनी ज्यादा होती है कि इन दोनों चीजों का वक्त ही नहीं मिलता है। सलाम भाई गुड आफ्टरनून भाई कैसे हैं आप उम्मीद है आप ठीक होंगे इतने दिनों बाद आपकी आवाज सुन रही हूँ मुझे वेलकम करें भाई अपने शो में और आपके शो की लश पश आपके साथ होती है आप शो को 4 चांद नहीं 16 चांद लग जाते हैं। सच में भाई 100% सच बोल रही हूँ आपकी शॉप पर 2-3 दिन पहले आई आप नहीं थे आपकी छोटी सी लेस

0: साथ हमारे साथ है। अच्छे जीवा जीवा क्या बात है, दानिया हमारे शो को दानिया या फिर रानिया? और नहीं यार, मेरे शो में तो रानिया आते हैं, दानिया थोड़ी आती है। एनी जना बहुत शुक्रिया। और मैं कभी कभी किस्मत वालों को मिल जाता हूँ अपनी शॉप के ऊपर, किस्मत वाले जिनके साथ मेरी मुलाकात बिल मुशाफा हो जाती है और केसन शॉप के ऊपर बराबरी हो जाती है, अदरवाइज बहुत कम लोगों के साथ मुलाकात होती है। रेव एंड अनुषा मसी है जनाब भाई, गुड गुड रोज मसी हमारे साथ हैं। और ये उस दिन हमारे शॉप पर अनुषा आई हुई थी, ठीक है जनाब, अनुषा जो है हमारी शॉप पर आई और हमें प्रोडक्ट जमा करवा के गई हैं। क्रिश्चियन कम्युनिटी से इनका ताल्लुक है और इनको हमने छोटा सा गिफ्ट भी दिया है ग्लूटा का। तो मेरी बहन क्या यूज कर रही हो, ग्लूटा फेस वॉश और ग्लूटा क्रीम मुझे बताना जरूर, ठीक है, कितना आपकी रंगत को इसने फेयर किया है, क्योंकि ग्लूटा के अंदर जो ग्लूटाथियोन है वही आपके रंग को गोरा करता है, ठीक है जनाब। बेसिकली आपके जिस्म के अंदर भी बनता है ग्लूटाथियोन, और जब कम बनना शुरू होता है, आम लफ्जों में लोगों को मैं ये समझाता हूँ कि जब जिस्म के अंदर खून की कमी हो तो क्या करते हैं, खून की बोतलें लगवाते हैं। इसी तरीके से जब आपके जिस्म के अंदर ग्लूटाथियोन की कमी होती है, ग्लूटाथियोन आपके अल्लाह ने एक चीज बनाई है जो आपके जिस्म के अंदर बनती है, जिस तरह खून है उसी तरह ग्लूटाथियोन होता है, कम हो जाए तो आप सांवले हो जाते हैं। ग्लूटाथियोन उसी कमी को पूरा करता है, इसलिए आजकल ग्लूटाथियोन के इंजेक्शन आ रहे हैं, टेबलेट्स आ रही हैं, सीरम्स आ रहे हैं, इसके साथ साथ ग्लूटाथियोन की गोलियां आ रही हैं, इंजेक्शन आ रहे हैं, ड्रिप आ रही है। ग्लूटाथियोन के जो लोग लगवाते हैं उन गोरे होते हैं, तो हमने अभी कोई इंजेक्शन नहीं बनाया ग्लूटाथियोन का, कोई ड्रिप नहीं बनाई है, कोई टेबलेट नहीं बनाई है, कोई सिरप नहीं बनाया, हमने ग्लूटाथियोन की क्रीम बनाई है, ग्लूटाथियोन का साबुन बनाया है, ग्लूटाथियोन का फेस वॉश बनाया, और बहुत जल्द आप लोगों के लिए ग्लूटाथियोन की हैंड्स एंड फीट के लिए वो भी ग्लूटा की क्रीम भी आप लोगों के लिए आ रही है। तो चार चीजें ग्लूटा की आ जाएंगी आपके पास, कंपनियां आपने देखी होंगी, और हम एक एक वेरिएंट चार चार किस्म के बनाते हैं, यानी कि ग्लूटा की चार चीजें आपको एक साथ मिलेंगी, ठीक है जनाब। और अनुषा ने उस दिन हमने एक जो ऑफर चलाई हुई है कि आपके पास जो इस्तेमाल शुदा खाली पैक्स हैं वो केसन शॉप के ऊपर जमा करवाएं, और जिसके सबसे ज्यादा होंगे हम उसको अक्टूबर के महीने में इनाम देंगे। तो इन्होंने जो प्रोडक्ट हमें जमा करवाए हैं उनकी तादाद 25 थी, 25 खाली पैक्स ये हमें देखे गए हैं। तो इनको शो के अंदर वेलकम करते हैं। वेव एंड वेव वेव लिखा हुआ है, वेव अनुषा मसी हाँ जी, और रोज मसी इनके साथ जो है मौजूद हैं, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। एंड कौन है जनाब, इफी जान आ चुकी है जनाब, दो तीन दिन बाद आज फिर हम इफी को हैप्पी इफी हैप्पी हैप्पी इफ्रा जिसको हम बोलते हैं, हाँ जी वही है। सलाम सलाम, कैसे हैं केटीए केटीए साहब, कैसे हैं? तीन दिन बाद केसन की शो में, कल मैंने नानी के लिए केसन वाला हाजमा कंट्रोल सिरप लिया है, हाजी जरी जनरल स्टोर जफर आबाद से, बहुत बहुत बेस्ट रिजल्ट है, वश बहुत ही नाइस है, लास्ट में केटीए जिंदाबाद। इफी इफी हमारे साथ है, इफी वेलकम आपको करते हैं, और मैं भी केसन घर का हिस्सा बनूंगी और मैं अपने देखान वालों के साथ आऊंगी। चलो जी, केसन घर के अंदर लोग आना शुरू हो गए हैं और इस दफा एलिमिनेशन भी होंगी और हर हफ्ते एलिमिनेशन होगी, तो इफी को हैप्पी इफ्रा है जनाब, ये आ चुकी है हमारे शो में, ना सिर्फ शो में बल्कि केसन घर के अंदर भी ये शमूलियत करेंगे। पुराने केसन घर सीजन 2 और 1 के अंदर भी हमारे साथ इफ्रा मौजूद थी, बीच में चली गई थी हमारे केसन घर को छोड़कर, तो इस दफा देखते हैं कि भाई हैप्पी इफ्रा जो है वो कितने अरसे के लिए हमारे केसन घर के अंदर रहती हैं, ठीक है जनाब। एक कॉलर हमारे साथ हैं जनाब, उन्हें मौका दे रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या
0: जनाब, क्या हाल है जी, ठीक ठाक है, कौन है हमारे साथ भाई, नाम बताएंगे अपना? नाम
1: साजिद हूँ सर, दी खान से।
0: साजिद दी खान से बात करें, मोहतरम कैसे
1: जी? सिलीगुड़ी वैसे मैं रहने वाला लयक हूँ, लेकिन प्रोडक्ट से ये हमने लेनी है, दुकान है हमारी वहाँ, यहाँ पे आते हैं तो कभी कभी ये शो सुन लेते हैं हम आपका।
0: अच्छा जी, ठीक है
1: जी जी। तो ये सर हमें अपनी शॉप का एड्रेस बताएं, वो अकबर प्लाजा तो बताएं, लेकिन हम डी खान के इतने वाकिफ नहीं है।
0: हाँ बस चुगल्ला के साथ जब पहुंचेंगे ना, चुगल्ला तो देखा हुआ है ना, चुगल्ला तो मशहूर है, उसके साथ है कमर्शियल मार्केट, ठीक है
1: सर।
0: तो कमर्शियल मार्केट के दो दरवाजे होते हैं, एक एंट्रेंस होती है, एक एग्जिट होता है ना, ठीक है। तो जो एग्जिट है ना, पिछले की तरफ जो दरवाजे खुलते हैं उसके बिल्कुल सामने जब आप निकलेंगे तो अकबर प्लाजा है, ठीक है,
1: ठीक है
0: यानी कि कमर्शियल मार्केट के अंदर दाखिल होकर आपने उधर से कोई चीज नहीं खरीदनी है, निकलेंगे सामने अकबर प्लाजा है और वहां पर मशहूर तरीन दुकान है केसन शॉप अल्हम्दुलिल्लाह, तो वहां पर जाएंगे तो आपको केसन के सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे भाई मेरे।
1: बिल्कुल सर, बहुत बस हम तो इधर कभी कभी आते हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, काम तो फर्स्ट किया हमने अभी सर।
0: अच्छा, बहुत शुक्रिया,
1: माशाल्लाह काफी शौक से सुनते, अभी भी सुन लेते हैं आपका शौक।
0: तो प्रोग्राम अभी तक आपने केसन की कोई प्रोडक्ट अभी तक आपने नहीं दी? अभी तक
1: नहीं दी सर, क्योंकि यहाँ पे तो हम वैसे ड्राइवर है, कभी कभी आते हैं ना यहाँ पे।
0: अच्छा, कभी कभी
1: जी सर, तो सुनते हैं वैसे लिया के रिए सर।
0: ठीक है, लाइए
1: शॉप है जी सर, तो हमने कहा कि ये प्रोडक्ट वहाँ पे ले जाते हैं इंशाल्लाह इसका देना, ताकि भाई को खुद मिले और खुद वहाँ से लें।
0: हाँ, बिल्कुल आ जाए तसल्ली के साथ, अगर आपके लोगों को पसंद भी ना आए तो आपने वापस ले आने, आपको सारे के सारे पैसे, लेकिन पसंद आएंगे आप हर महीने लेने आएंगे
1: सर। बिल्कुल बहुत सुनते हैं प्रोग्राम इधर का, पहाड़पुर का, टांग का सर।
2: It's 5 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.8. Walking.

दिल से जो निकलती है, दिलों तक जो जाती है, मालूमात को जगाती है, दुनिया का हाल बताती है। ये वो आवाज है जो आपके शहर में आपको अपनों से मिलाती है। ये आवाज है जो अमन की है। ये वो पैगाम है जो अमन है। रेडियो अमन 88.4 अमन का पैगाम।

आसमान के सोरे रहता फका और पीर अब्दुल मतलब से बैठ आसमान के सोरे रहता फका इन आसमान अवदूद जबरदस्त मीना पहाग सूर्य माता हूँ मनाना पीर से खुशहाल है अबिद बलो जिसने बुत लाया था तोहफे के तर्ज पे वो लतीफा वो लतीफा शाम में मेरा मनन अच्छी फिर से इंशाल्लाह जरूर हाँ इंशाल्लाह।